0: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोकती? ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: अच्छा अच्छा बोलो बोलो, प्यार है मऊ चांदी आला करिश्मा कपूर, अच्छा मऊ गंदा आला शाहरुख खान, अच्छा अच्छा।
0: और हिंदी कविता
2: डंगर है
3: सोना सोना सोना।